हर पल हर दिन भारतीय संगीत का ये रागम डीटीएच चैनल। संत तुलसीदास की ये रचना प्रस्तुत है मन्ना डे के स्वर में। बोल तहिते आयो शरण सवे।

हर पल हर दिन भारतीय संगीत का ये रागम डीटीएच चैनल है। लीजिए सुनिए आलोक गांगुली के स्वर में ब्रह्मानंद की ये रचना, सुनो सुनो ध्यान से प्यारा।

0: ध्यान से प्यारा ओ बाग पे कूद लगाना, सुनो सुनो ध्यान से प्यारा।
1: आप सुन रहे थे भारतीय संगीत का रागम डीटीएच चैनल, हर पल हर दिन भारतीय संगीत।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत तो लीजिए प्रस्तुत है पहले धमार, तदुपरांत द्रुत तीन ताल पर तबला वादन. कलाकार हैं पंडित परिमल चक्रवर्ती. आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं हिरणमोय मित्रा. तो लीजिए प्रस्तुत है पहले धमार तथा उसके उपरांत द्रुत तीन ताल पर तबला वादन. कलाकार हैं पंडित परिमल चक्रवर्ती.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. This morning we present a Hindustani instrumental recital followed by a Hindustani vocal recital. Listen first to Dhamar followed by Drut Teen Taal on the tabla. Our artist is Pandit Porimal Chakraborty. Accompanying our artist on the harmonium is Hiranmoy Mitro. Listen now to Dhamar followed by Drut Teen Taal on the tabla. Our artist Pandit Porimal Chakraborty.

0: अभी आप पहले धमार तदुपरांत द्रुत तीन ताल पर तबला वादन सुन रहे थे। कलाकार थे पंडित परिमल चक्रवर्ती और आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे हिरणमय मित्रा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अभी प्रस्तुत है शुक्ला बिलावल पर आलाप ओ ध्रुपद। कलाकार हैं पंडित फाल्गुनी मित्रा। आपके साथ पखवाज पर हैं अपूर्व लाल मन्ना तथा हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं सनातन गोस्वामी। तो लीजिए प्रस्तुत है शुक्ला बिलावल पर आलाप ओ ध्रुपद। कलाकार हैं पंडित फाल्गुनी मित्रा।
1: You were listening to Dhamar followed by Drut Teen Taal on the tabla. Our artist was Pandit Porimal Chakraborty. Accompanying our artist on the harmonium was Hiranmoy Mitro. This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, we now present a Hindustani vocal recital. Listen to Alap and Drupad in the rag Shukla Bilawal. Our artist is Pandit Falguni Mitra. Accompanying our artist on the Pakhavaj is Apurbalal Manna and on the harmonium is Sanatan Goswami. Listen now to Alap and Drupad in the rag Shukla Bilawal. Our artist, Pandit Falguni Mitra.

0: अभी आप शुक्ला बिलावल पर आलाप ध्रुपद सुन रहे थे। कलाकार थे पंडित फाल्गुनी मित्रा, आपके साथ पखवास पर थे अपूर्व लाल मन्ना और हारमोनियम पर थे सनातन गोस्वामी। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम, 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to Alap and Dhrupad in the Rag Shukla Bilawal. Our artist was Pandit Falguni Mitra. Accompanying him on the Pakhavaj was Apurbalal Manna and on the harmonium was Sanatan Goswami. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओ, रागम DTH पर 24 घंटे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं विदुषी किशोरी आमोणकर के गायन से। आपने प्रस्तुत किया है राग बसंत बहार। विलंबित ख्याल तीन ताल में निबद्ध है और ख्याल के बोल है बरजो ना मान। द्रुता ख्याल तीन ताल में निबद्ध है और बोल है मानरे मानरे पिया मोरी बिनती। आपके साथ तबले पर है गोपाल वाड़ेगांवकर, हारमोनियम पर है बबनराव आठले। सुनते हैं राग बसंत बहार, कलाकार विदुषी किशोरी आमोणकर।

0: श्रोताओं, हम सुन रहे थे विदुषी किशोरी अमोणकर का गाया हुआ राग बसंत बहार। आपके साथ तबले पर थे गोपाल वाडेगांवकर और हारमोनियम पर थे बबन राव आठले।
1: कार्यक्रम को जारी रखते हुए आप सुनते हैं विदुषी किशोरी अमोणकर का गाया हुआ राग बहादुरी तोड़ी। विलंबित ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल है ए महादेव पार्वती पति। तबले पर साथ कर रहे हैं गोपाल वाडेगांवकर, हारमोनियम पर बबन राव आठले। आइए सुनते हैं विदुषी किशोरी अमोणकर का गाया हुआ राग बहादुरी तोड़ी।

अभी अपने विदुषी किशोर यामोनकर का गाया हुआ राग बहादुरी तोड़ी सुना। तबले पर साथ की थी गोपाल वाड़ेगांवकर ने, हारमोनियम पर बबन राव आठले। रागम 24/7 DTH के लिए ये आकाशवाणी पुणे की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित मधुप मुद्गल का गाया राग भटियार. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल है कल नाही पावे और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल है दिन गए बीत सुख के. तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चैटर्जी ने और हारमोनियम पर समरजीत राय ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present for you a vocal recital by Pandit Madhup Mudgal. He first presents Rag Bhatiyar, in which he will present a Bada Khayal set to Vilambit Ektal. The lyrics are Kala Nahi Pave. This will be followed by a Chota Khayal set to Drut Tintal. The lyrics are Din Gaye Beet Sukh Ke. He is accompanied on the tabla by Shri Prasoon Chatterjee and on the harmonium by Shri Samarjeet Roy.

0: अभी आप पंडित मधुप मुद्गल का गाया राग भटियार सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी प्रसून चटर्जी ने और हारमोनियम पर समरजीत राय ने।
1: दैट वॉज राग भटियार संग बाय पंडित मधुप मुद्गल।
0: और लीजिए अब सुनिए पंडित मधुप मुद्गल का गाया राग बिलास खानी तोड़ी। विलंबित ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं नीके घूंघरिया, और तीन ताल में निबद्ध द्रुत ख्याल के बोल हैं नीके नीके शोभा देखत। तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चटर्जी ने और हारमोनियम पर समरजीत राय ने।
1: He concludes his recital with Raag Bilas Khani Todi, in which he presents the Bada Khayal. The lyrics are Neeke Ghungharia. This will be followed by the Chota Khayal. The lyrics are Neeke Neeke Shobha Dekhat.

0: अभी आप पंडित मधुप मुद्गल का गाया राग बिलास खानी तोड़ी सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी प्रसून चटर्जी ने और हारमोनियम पर समरजीत राय ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग बिलास खानी तोड़ी वी कम टू द एंड ऑफ द वोकल रिसाइटल बाय पंडित मधुप मुद्गल। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय श्री प्रसून चटर्जी एंड ऑन द हारमोनियम बाय श्री समरजीत रॉय। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

श्री आर विश्वेश्वरन कंक्लूड्स द वीना रिसिटल विद कुमार स्वामीनम इन असावेरी रागम सेट टू आदितालम मुत्तुस्वामी दीक्षितार कीर्तना कार्यक्रम चवरिका कुमारी स्वामीनम असावेरी रागम आदितालम मुत्तुस्वामी दीक्षितुल कीर्तना।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत प्रस्तुत है सुश्री रितु भार्गव का गाया राग सालक बराली तोड़ी। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल है तेरो ही नाम जगत आधार। द्रुत पंदिश तीन ताल में निबद्ध है, बोल है पथिकवा जारे जारे जा। हारमोनियम पर आपके साथ संगत की है मोतीलाल राठौर ने और तबले पर संगत कर रहे हैं भरत कुमार मिश्र। दिस इज रागम इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। वी आर प्रेजेंटिंग रितु भार्गव। शी इज प्रेजेंटिंग ख्याल इन राग सालक बराली तोड़ी। अकॉम्पनिंग हिम ऑन तबला श्री भरत कुमार मिश्र एंड ऑन हारमोनियम श्री मोतीलाल राठौर।

ये है रागम, 24 घंटे सातों दिन DTH अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे राग सालक बराली तोड़ी, गायिका थी ऋतु भार्गव। अब आप सुनिए इन्हीं के स्वरों में राग कलावती में ख्याल। विलंबित के बोल है एरी आली बना बन आयो, और द्रुत के बोल है तन मन धन तुम पर बारू। तबले पर आपके साथ संगत कर रहे हैं भरत कुमार मिश्र, और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं मोतीलाल राठौर। दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। यू आर लिसनिंग राग सालक बराली तोड़ी बाई ऋतु भार्गव। नाउ शी इज गोइंग टू प्रेजेंट राग कलावती। अकॉम्पनिंग हिम ऑन तबला भरत कुमार मिश्र, एंड ऑन हारमोनियम मोतीलाल राठौर।

Sagaba,

अभी आप सुन रहे थे रितु भार्गव का गाया राग कलावती। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का गाया राग अलैया बिलावल में छोटा ख्याल। बोल है मन हरवारे। नाउ यू आर लिसनिंग रितु भार्गव इन राग कलावती। नाउ शी इज गोइंग टू प्रेजेंट राग अलैया बिलावल।

अभी आप सुन रहे थे रितु भार्गव का गाया राग अलैया बिलावल। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से। नाउ यू आर लिसनिंग अलैया बिलावल बाय रितु भार्गव। दिस इज रागम 24/7 डीटीएच एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। दिस प्रोग्राम वॉज कंट्रीब्यूटेड बाई ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए प्रस्तुत है अग दरबारी कनाड़ा पर ख्याल गायन. कलाकार हैं अरुण कुमार बासु. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं गौतम चक्रवर्ती और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं चितरंजन दौलोई. तो लीजिए प्रस्तुत है राग दरबारी कनाड़ा पर ख्याल गायन. कलाकार हैं अरुण कुमार बासु.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल. लिसन टू अ ख्याल इन द राग दरबारी कनाड़ा. आवर आर्टिस्ट इज अरुण कुमार बासु. Accompanying our artist on the tabla is Gautam Chakraborty and on the harmonium is Chittaranjan Doloi. Listen now to a khayal in the rag Darbari Kanara. Our artist Arun Kumar Basu.

0: अभी आप राग दरबारी कनाडा पर खैगान सुन रहे थे। कलाकार थे अरुण कुमार बासु। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे गौतम चक्रवर्ती और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे चित्रंजन दोलोई। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम, 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to Khayal in the Rag, Darbari Kanara. Our artist was Arun Kumar Basu. Accompanying our artist on the tabla was Gautam Chakraborty, and on the harmonium was Chittaranjan Doloi. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में खयाल गायन। कलाकार हैं पंडित बाला साहेब पूछ वाले। राग है देव गंधार। तबले पर संगत की है राम स्वरूप रतौनिया ने। This is Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel. Now listen to a Hindustani khayal recital by Pandit Bala Saheb Poochwale. The rendition commences with the rag Dev Gandhar. The accompaniment has been provided by Ram Swaroop Ratonia on the tabla.

आप सुन रहे हैं हिंदुस्तानी ख्याल गायन, कलाकार हैं पंडित बाला साहेब पूछवाले। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी ख्याल रिसाइटल बाय पंडित बाला साहेब पूछवाले। ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग बिलास खानी तोड़ी। विलंबित ख्याल झूमरा ताल में निबद्ध है, बोल हैं बिल से अतन्यारी। द्रुत ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं सुनत भई देववाणी। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स राग बिलास खानी तोड़ी।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी ख्याल गायन, कलाकार थे पंडित बाला साहेब पूछवाले, संगत कलाकार थे तबले पर रामस्वरूप रतौनिया। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वे लिसनिंग टू हिंदुस्तानी ख्याल रिसाइटल बाय पंडित बाला साहेब पूछवाले। द कंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला। This program was contributed by All India Radio Bhopal for Ragam 24/7, an exclusive

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है पखावज वादन. कलाकार है महंत विजय रामदास. सबसे पहले आप पखावज पर चौताल प्रस्तुत करेंगे. आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं विनोद कुमार मिश्र.

गणपतये एकदंत लंबोदर करत शोलत्र पुंड्रभाल लोचन विशाल धृत रुचिर माल वारे सुर पूजित कीरति अखंड तट दीन कृतज्ञ मुदित मन पद रज धा धग धग प्रज्वलित तेज धा कृतक कृतक गृंगधा गृंगधा धा धग धग प्रज्वलित तेज धा कृतक कृतक गृंगधा गृंगधा धा धग धग प्रज्वलित तेज धा कृतक कृतक गृंगधा।

जय शिव शंकर जय प्रलयंकर जय अभयंकर शीश त्रिपुंड जयति करुणाक अंग भस्म अर्धंग संग धर गरल कंठ धर फणि धर शशिध जटाजूट धर मध्य गंग धर कर त्रिशूल धर जयति त्रिपुर वीर भद्र गण हर विरंच सुर सहित मुनीस मनीष करत जय धक धक धारिंदा धारिंदा धारिंदा जय जय मन मधारि धक धक धक ज्वाल माल आशुतोष त्रय नेत्र कृपाधर चरण शरण नित ध्यावत गौर वरण भुज इंद्र माल अविनाशी काशी के बासी कैलाशी तुम पार्वती पति नित नित नम नम जय जय हर हर हर हर नित नित नम नम जय जय हर हर हर हर नित नित नम नम जय जय हर

यज्ञ ध्वंस करि करत विपुल हुंकार उठत बारिद प्रलयंकर दामिनी दमकत कड़कड़ा वज्रक्रांत धा कत्ति धगति टिक्रधक टिक्रान क्रान क्रान क्रान त्रिकृतिकृता त्रिकृधा क्रांत धा क्रांत त्रिकृतिकृता त्रिकृधा क्रांत धा क्रांत त्रिकृतिकृता त्रिकृधा क्रांत धा सती भस्मिले अंग अंग लपटावत शंख लोहित लोचन नाचत तांडव धा कृतक धुमकृतक तक्रान तक्रान धा कृतक धुमकृतक तक्रान तक धा कृतक धुमकृतक तक्रान तक्रान धान धिकट धा त्रिकृतिक धा

0: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे महंत विजय रामदास का बजाया पखावज पर चौताल। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया पखावज पर ताल धमार। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं विनोद कुमार मिश्र।
1: धागिन धागिन त्रिकृतकता त्रिकृतकता धित धित धे धे धे कृधेता धेता धल धल धल धल धिलांग घतान कृधा ते धुम कृतकता धृकृतक धे धे धकिट किट धागे तेटे कतिट धा कृतक त्रिकृतकता त्रिकृतक त्रिकृतकता धा झम के झू मत सुंड फेरत गया मूर्ति गजाननम त्रिकृधेत धे धे धेत गणपति बाल लाल विशाल रा पुंड्र धग धग ज्योति जग मग धधक धक धक धधक धक धक जेति जय शंकर सुमन एक दंत मूसक वाहनम जय सकल कल्याण प्रद प्रभु धाकृत धुमकृत धक्कृत धुमकृत गिरिंगदा धुमकृत गिरिंगदा धुमकृत गिरिंगदा कृतकृत धुमकृत गिरिंगदा धुमकृत गिरिंगदा धुमकृत गिरिंगदा कृतकृत धुमकृत गिरिंगदा धुमकृत गिरिंगदा धुमकृत गिरिंगदा धागिन धागिन।

कल्याण प्रद प्रभु दागृत दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम कृतक दुम

बम बम शिव शिव अगड़ बम डिमि डमरु डमक डिमि डिमि डिमि बाजत डिमि डिमि डिमि डिमि टिके के डिमि डिमि धम कृत धम कृत धम कृत कृत गा धम कृत करिंग बम बम उपकार करत फणि धर भुजंग सिर धर ति धर ति धर धर धर धवल धार गंगा छब धर ति धर कृत कृत कृत धर कृत ता धर कृत धर कृत ता धर कृत धर कृत ता धा जटा घटा मह चंद्र छटा गिरिंग धकट धा धा गिरिंग त्रिपुंड राजे मुंड मा वक्षस्थल साजे कर त्रिशूल चम चम चम चम कत भरत सबार मार मदमर शांत स्वरूप अनूप सकल सुरभूप मुकुटमणि ध्यान धरत कल्याण कर उतरत मुनिगन नित धा धा दिंता धा गृधान धगत टिक्र धकट धग त्रिकृत कृत त्रिकृत कृत त्रिकृत कृत धान दान धगत टिक्र धान बंभूला बंभूला बंभूला बंभूला धान दान धगत टिक्र धान बंभूला बंभूला बंभूला बंभूला दान दान धगत टिक्र धान बंभूला बंभूला बंभूला बंभूला।

धा धुरु दृग दृंग धा धुरु दृग दृंग धा धुरु दृग दृंग धा धुरु दृग दृंग

अभी आप सुन रहे थे महंत विजय रामदास का बजाया पखावज पर धमार ताल। आप अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे पखावज पर बजाए झपताल से। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं विनोद कुमार मिश्र।

गणपति भग प्रथम पूज्य जग भाल लाल शुभ सुंद माल गले मुंड वीरा दिन दिन चतुरा ननचित धारे दीनन की दीनता निवारे दादाता प्राता शंख चक्र कर गदा पदुम धारे विष्णु विपत्ति विनाशन धरे धुमकृत धिकट धा बम बम शिव शिव अगड़ बम डिम डमरु डम डिम डिम डिम तक धा धा डिम डिम तक धा डिम डिम तक धा डमरु डिम डिम डिम तक धा धा डिम डिम तक धा डिम डिम तक धा डमरु डिम डिम डिम तक धा धा डिम डिम तक धा डिम डिम तक दुर्गा।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DGH अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे महंत विजय रामदास का बजाया पखावज पर झपताल। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे थे विनोद कुमार मिश्र। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: 24/7 DTH इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है। प्रस्तुत है फैयाज वसीफुद्दीन डागर का गाया राग भटियार।
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। वी नाउ प्रेजेंट फॉर यू अ वोकल रिसाइटल बाय फैयाज वसीफुद्दीन डागर। ही फर्स्ट प्रेजेंट्स राग भटियार।

0: अभी आप फैयाज वसीफुद्दीन डागर का गाया राग भटियार सुन रहे थे, और लीजिए अब सुनिए विदुषी शर्मिष्ठा सेन का सितार पर बजाया राग अलैया बिलावल।
1: दैट वॉज राग भटियार सांग बाय फैयाज वसीफुद्दीन डागर। नाउ यू शैल हियर अ सितार रिसाइटल बाय विदुषी शर्मिष्ठा सेन। शी प्रेजेंट्स राग अलैया बिलावल।

0: अभी आप विदुषी शर्मिष्ठा सेन का सितार पर बजाया राग अलैया बिलावल सुन रही थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: दैट वॉज राग अलैया बिलावल प्रेजेंटेड ऑन द सितार बाय विदुषी शर्मिष्ठा सेन। एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम विच वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी संगीत. हिंदुस्तानी संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम. आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भजन और श्यामा संगीत. आज के कलाकार हैं आनंदिता सरकार, अनिरुद्ध नाथ, अनुराधा चक्रवर्ती और तिमिर घोष. कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं मीरा के इस भजन से जिसे गाया है आनंदिता सरकार ने. तो आइए सुनते हैं मीरा का ये भजन, कलाकार आनंदिता सरकार.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी प्रेजेंट डिवोशनल सॉन्ग्स. We begin the program with a Meera Bhajan. Our artist is Anindita Sarkar.

0: अभी आप मीरा का ये भजन सुन रहे थे। आज की कलाकार थी अनिंदिता सरकार। आइए अब आपको सुनवाते हैं मीरा का ही एक और भजन। कलाकार हैं अनिरुद्ध नाथ। तो आइए सुनते हैं मीरा का ये भजन अनिरुद्ध नाथ की आवाज में।
1: यू वर लिसनिंग टू मीरा भजन। आवर आर्टिस्ट वॉज अनिंदिता सरकार। This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Listen now to a Meera Bhajan by our artist Aniruddha Nath.

0: लीजिए प्रस्तुत है एक और भजन, कलाकार हैं अनुराधा चक्रवर्ती।
1: यू आर लिसनिंग टू मीरा भजन बाय आवर आर्टिस्ट अनिरुद्ध नाथ। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। वी नाउ प्रेजेंट भजन बाय आवर आर्टिस्ट अनुराधा चक्रवर्ती।

0: हिंदुस्तानी संगीत के तहत अभी आप भक्ति संगीत के कार्यक्रम में भजन सुन रहे थे। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्यामा संगीत। आज के कलाकार हैं तिमिर घोष।
1: यू आर लिसनिंग टू भजन बाय आवर आर्टिस्ट अनुराधा चक्रवर्ती। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। कंटिन्यूइंग द कॉन्सर्ट वी नाउ प्रेजेंट श्यामा संगीत। Listen now to Shyama Sangeet by our artist Timir Ghosh.